0: ते हाई के जी मामा ने हाई के जी मांगे ते बलेगा बलेगा बलेगा बलेगा ये
1: यो वीकेंड एक्सप्लेन इट
2: द म्यूजिक इट जस्ट हिट्स डिफरेंट
1: ऑन यारोन एफएम